drumada de chopini, suhasini, sumadhura bhashini.

एमएफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आर्थिक संवाद 1947 ज्येष्ठ माह की आठवीं तिथि तदनुसार सन 2026 मई महीने की दिनांक 23 और दिन है शनिवार। श्रोताओ, अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित की जाने वाली सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्री तुतन टाशी, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कमी यांगफो, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अंतु कुमार दास और मिस शिखा डेका, मनपा में उद्घोषक श्री तुतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कर्मू। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

मिलियमी फेक 97.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज की तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए, अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिड्डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी

0: आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के

0: कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी की दिल्ली

केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे मिट्टी न्यूज तथा दोपहर समाचार। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए गायक उपासना मेहतास के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत और संगीतकार है बेनी नराग। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद भक्ति गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, हम आपको सुनाते हैं अलग अलग प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। अलग अलग प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद लद्दाखी लोकगीत। इसके गायक कलाकार है जिग्मे दोर्जी और साथी। लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गायक उपासना मेहता की स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद लद्दाखी लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

श्रोता, इसी लद्दाखी लोक गीतों के साथ ही कार्यक्रम अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए पीएम श्री जैनवी तवांग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस कर्मा ड्रेमा से संतुलित आहार के लाभ विषय पर चंद शब्द।

आकाशवाणी तावांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में अब सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कर्मा जेमा, पीएम श्री चेन्नी तावांग, कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्र। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है संतुलित आहार के लाभ है। किसी ने बहुत सही कहा है कि थका हरा तन मन हो जाए जब संतुलित भोजन पास न आए। हरी सब्जियां, फल और दालें जीवन में नई ऊर्जा ले आए। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की जरूरत के सभी पोषक तत्व मिले हो। अच्छा भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है या हमें रोज के काम करने और पढ़ाई करने के लिए ऊर्जा देते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए संतुलित आहार विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि इसी से उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। सही आहार से हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि होती है और हमारा दिमाग तेज रहता है। जब हम अच्छे खाते हैं तो हमें पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होती है और हमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। संतुलित आहार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि

फल और दालें जीवन में नई ऊर्जा ले आए। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की जरूरत के सभी पोषक तत्व मिले हो। अच्छा भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, यह हमें रोज के काम करने और पढ़ाई करने के लिए ऊर्जा देते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए संतुलित आहार विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। सही आहार से हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि होती है और हमारा दिमाग तेज रहता है। जब हम अच्छे खाते हैं तो हमें पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होती है और हमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। संतुलित आहार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। आज के समय में जब तरह तरह की बीमारियां फैल रहे हैं, तब एक मजबूत इम्यून सिस्टम हमें स्वस्थ में मदद करते हैं। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि हम अपनी उम्र के हिसाब से कैलोरी लेना चाहिए। बढ़ते बच्चों को सादा और बड़ों को संतुलित कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। साथ ही ज्यादा मीठा और तली भुनी चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारा हृदय और मांसपेशियां मजबूत रहें। अच्छा भोजन हमारे पाचन तंत्र को सही रखते हैं और वजन को नियंत्रित करता है। इससे हमारे त्वचा, बाल और दांत भी स्वस्थ रहते हैं। पिंकी बबली और उमंग भोजन करते देखो संग, पिंकी खाती गजर आलू, बबली खाती तीखे तमालू। पालन पनीर उमंग को पाए, तीनों ने मिलकर खीर भी खाए। पौष्टिक आहार तुम भी खाओ, अच्छा सेहत तुम भी पाओ। संतुलित आहार से बच्चों और किशोरों में लंबाई और वजन का सही विकास होते हैं। इससे कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसे समस्या कम होती है। इससे सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से भी बचाव होती है। संतुलित आहार जीवन को गुणवत्ता में सुधार कर लंबी उम्र में सहायक होता है। हमें हर रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर

0: को हाइड्रेट रखता है। पोषक तत्व भरपूर आहार बेहतर नींद लाने में योगदान देते हैं, जिससे आराम में मदद मिलते हैं। रोजाना एक सेब खाए डॉक्टर से दूर रहे। रोजाना एक सेब खाए डॉक्टर से दूर रहे, पौष्टिक खाना खाए, तंदुरुस्त जीवन जिए, जंक फूड का परित्याग ही बीमारियों को जड़ से मिटाए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम रोज से ही समय पर स्वस्थ भोजन खाए, जैसे फल सब्जियाँ और घर का बना हुआ खाना खाए, तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम रोजाना संतुलित भोजन करें तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। इसलिए हमें जंक फूड से बचकर पौष्टिक और संतुलित भोजन को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।
1: श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जैनवी तवांग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस कर्मा ड्रिमा से संतुलित आहार के लाभ विषय पर चंद। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। लीजिए श्रोताओ, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म गदर 2 से, अरिजीत सिंह और मिथुन के आवाजों में। मिथुन द्वारा संगीत पद पर इसे लिखा है शहीद कौधरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म उदित नारायण के स्वर में फिल्म मिस्टर और मिसेस माही के से। गीत समीर अंजान के है व संगीत आदर्श श्रीवास्तव का।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म ओम शांति ओम से। गायक के स्वर में, गीतकार है विशाल दत्तलानी तथा संगीतकार विशाल और शिखर।

0: श्रोताओं, फिल्म ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो चुके हैं। लीजिए अब हम आपकी कीमत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनिए फिल्म बजरंगी भाईजान से, गायक जुबिन नौटियाल के स्वर में। गीत नीलेश मिश्रा के है व संगीत प्रीतम का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के युगल आवाजों में। कुमार के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है शरीफ तोशी ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म फैनी खान से यह गीत सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाजों में। इर्शद कमल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से। विशाल ददलानी और सलमाली कुलकर्णी के स्वरों में अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द रचना पर इसे संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला अंतिम गीत पेश है सुनिधि चौहान और नवराज हंस के आवाजों में फिल्म दे दे प्यार दे से। कुमार द्वारा कलमबद्ध पर इसे संगीत से सजाया है विपिन पटवा ने।
1: We are controlling transmission.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए रोनू मजुमदार से मुरली वादन तथा तबला पर संगत दे रहे हैं श्री दुर्गा प्रसाद ने। दीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रानू मजुमदार से मुरली वादन तथा तबला पर संगत दे रहे थे श्री दुर्गा प्रसाद ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित समाचार हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS अपनी स्थापना के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 मई 2026 शुक्रवार को तिरप जिले के खोंसा स्थित नेहरू स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन करेगा। केबू ब्लूमिंग अर्ली इंटरवेंशन एंड लर्निंग सेंटर तथा अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन आया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से 24 मई 2026 को ईटानगर स्थित आरके मिशन हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोंगो में इबोला के बुंडीबुगियो स्ट्रेन में उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम बत किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश ने अपने कर्मयोगी पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे को मान रखे और उसे मजबूत करे। श्री मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस।

0: में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों ने नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित की गई। पूरे देश से चुने गए नए कर्मचारियों रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS अपनी स्थापना के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 29 मई 2026 को तिरप जिले के खोंसा स्थित नेहरू स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन करेगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर दौड़ और 5 किलोमीटर दौड़ के विजेताओं को नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। के ब्लूमिंग अर्ली इंटरवेंशन एंड लर्निंग सेंटर तथा अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन आयांग मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से कल यानी 24 मई 2026 को राजधानी ईटानगर स्थित आरके मिशन हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे। ये शिविर डोनेट ब्लड फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस शिविर का उद्देश्य न्यूरो डायवर्सिटी के प्रति जागरूकता फैलाना और न्यूरो डायवर्स लोगों को समाज में स्वीकार करने का संदेश भी देना है। शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया है कि विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पूर्ण मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा कर ले। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ. सिंह ने कहा है कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया गया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा।
1: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई भी कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा है कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलित और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिर की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों में इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक सीमित रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 47 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो ने आज सेवा तीर्थ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा है कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए हालिया मामले से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोंगो में इबोला बुंडी बुग्यो स्ट्रेन में उत्पन्न सर्जरी स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्र स्तर तक उच्चतम कर दिया है।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 6 से 7 दिन तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली और तिरप के लिए ऑरेंज एवं अन्य 13 जिलों वेस्ट कमेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सियांग, लोअर सियांग, कामले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. Addressing the Rozgar Mela, Prime Minister said the country is partnering with various countries of the world to provide opportunities, employment and global exposure to the youths. He expressed confidence that the new appointees will contribute to the nation's progress and their work and decisions will play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat. The government has published draft rules under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by 21st of next month. The Viksit Bharat Ji Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 has been notified on the 11th of this month for commencement across all the states and union territories with effect from 1st July this year. The Indian Air Force marked the successful completion of training of its Special Forces operatives with a maroon beret ceremonial parade at Air Force Station Chandinagar, Uttar Pradesh. Air Vice Marshal Rahul Gupta, Assistant Chief of Air Staff Operations, reviewed the parade as the chief guest.

मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। कार्यक्रम जरोखा से पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। उपायुक्त कार्यालय तवांग जिला जिटोसी तवांग से प्राप्त परिपत्र अनुसार अरुणाचल प्रदेश सरकार के ईटानगर स्थित खेल निदेशालय

विद्यालय से प्राप्त पत्र अनुसार कक्षा छठी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गवर्नमेंट संगे लदन स्पोर्ट्स एकेडमी ईटानगर में प्रवेश हेतु तवंग जिले से एक लड़के और एक लड़की के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार को सादे कागज पर आवेदन करना होगा जिस पर उसके हस्ताक्षर और माता पिता के प्रति हस्ताक्षर हो। आवेदन पत्र तवंग जिला खेल अधिकारी को संबोधित करे। उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 मई 2026 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया 4 चरणों में होगी। चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगा 5 जून 2026। खेल मानदंडों के अनुसार एवीटी या दांतों और हड्डियों की जांच के माध्यम से उम्मीदवार की वास्तविक आयु निर्धारित करने के लिए चिकित्सा परीक्षा 6 जून 2026 को होगी। शारीरिक फिटनेस परीक्षा 8 जून 2026 को और लिखित परीक्षा 9 जून 2026 को होगी। अधिक जानकारी के लिए आप जिला खेल अधिकारी तवंग से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुआ। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदुन लेरिम के अंतर्गत ग्यांगोंग अनि गोनपा के उमसे अनि थुतन छुजंग से बोध भक्ति गीत, 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनिएगा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे खंडू डुवा जामू जिला अस्पताल तवांग के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटन सिंह से प्रसावपुर देखभाल विषय पर भेंटवार्ता। शाम के 7:32 पर आप सुनेंगे दुनोवा गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर, रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर, शाम के 7:55 पर एक देशभक्ति गीत का आनंद लीजिएगा। आज रात 8 बजे आप सुन सकेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए चंद सदाबहार कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आज रात के 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9 बजे सुनी न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारे सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 बजे मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर के 3:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर के 3:50 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गीत मंजरी।
कल शाम की 4 बजे

फिर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग, 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम के 5 बजे नामधर लेरिम। रोजाना की तरह दैनिक मुख्य सूचना मनपा में कल शाम के 5:30 पर, शाम के 5:35 पर सका दवा के अवसर पर मोन देहाती एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा बुद्धा पार्क दवंग में 5वें दिन की धर्म शिक्षण कार्यक्रम, कल शाम के 6:20 पर आप सुनिएगा ग्यांगोंग आनी गोनपा के उमसे आनी थुतन छोसंग और साथियों से युंगनेक छोगा। कल शाम के 7:10 पर आप सुनिएगा कवाली गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली। शाम के 7:25 पर कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ, इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे कोंकणी भाषा में एक गीत और पाठ। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज कल रात के ठीक 8 बजे सुनिएगा। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। 8:30 पर स्पोर्ट्स गेन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनिए न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे मनपा में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा

0: कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानो भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the inter-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on the Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and NSA Ajit Dobhal were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared US's perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be part of India's growth journey. He said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by the 5th of next month, citing that the land was required for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry yesterday stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. It said the premises located in a highly sensitive and strategic area of Delhi is critically required for

0: for the strengthening and securing of defense infrastructure and other vital public security purposes. It further stated that possession shall be taken in accordance with law in the event of non-compliance. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today informed that Oil India Limited has successfully unlocked a new gas-bearing pay zone in the Dandewala field in Rajasthan. In a social media post, Mr. Puri said that the flow of natural gas for the first time from the shallower Shanu formation at nearly 25,000 standard cubic meters per day marks a significant achievement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that government has absorbed the burden of elevated fertilizer prices to protect farmers from rising input costs. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced it in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh advanced to the finals of the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang in Vietnam today, assuring India of at least two silver medals. In the 60kg category, Suraj Vashisht edged past Kyrgyzstan's Nuristan to book his place in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलो हर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोता, उपेश है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए खंडू ड्रुआ जांगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. छोटेन सिंह से प्रसादपुर देखभाल विषय पर भेंट वार्ता। भेंट करता है मिस दुर्शी ट्रमा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमने आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है खंडोडोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटेन सिरिंग जी को। डॉक्टर छोटेन सिरिंग जी, आपका सबसे पहले आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
3: थैंक यू, धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, डॉक्टर छोटेन सिरिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, तो आज हम इनसे गायनी यानी स्त्री रोग से संबंधित कई सारे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा करते हैं एंटीनेटल केयर पर। एंटीनेटल केयर या फिर प्रसव पूर्व जांच, जो हर गर्भवती महिला को अपनी गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच करवानी होती है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहिबा से जानते हैं कि एंटीनेटल केयर क्या है, इसकी क्या महत्व है, क्यों जरूरी होती है।
3: तो एंटीनेटल केयर का बेनिफिट ये है कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लो रिस्क प्रेगनेंसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो हम उन्हें अर्ली ट्रीट करके उसकी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं और प्रेग्नेंट महिला को एजुकेट कर सकते हैं कि क्या उनके शरीर में क्या क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एक कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब बर्थ स्पेसिंग के बारे में भी बता सकते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर।
2: जी जी, ये जो है गर्भावस्था के दौरान कि हमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और ये क्यों जरूरी है, इस बारे में आप कई सारे शिक्षा देते हैं और साथ साथ उनको बच्चे के जन्म से पहले कोई खतरा है या नहीं, ये तो आप जांचते ही है ना। और अब हमें ये बताइए कि गर्भावस्था के दौरान कितने बार एंटीनेटल चेकअप या एंटीनेटल केयर के लिए आपके पास आनी चाहिए किसी गर्भवती महिला को।
3: जो हम एंटीनेटल विजिट बोलते हैं वो WHO के अकॉर्डिंग मिनिमम 8 विजिट जरूरी है।
2: जी जी,
3: जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है 12 हफ्ते के अंदर उसे फर्स्ट विजिट एक डॉक्टर के पास जाना होते हैं। मिनिमम एंटीनेटल विजिट 8 बार होते हैं, बट अब आपको कब कब आना होता है, फर्स्ट विजिट्स होता है 12 हफ्ते के अंदर, जिसमें हम मिनिमम टेस्ट जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग आरएच टाइपिंग, एचआईवी, वीडीआरएल और बाकी शुगर टेस्ट करते हैं। अब प्रेग्नेंसी

0: में जो शुगर टेस्ट करते हैं वो अलग होता है नॉर्मल महिला से, जैसे उसे हम बोलते हैं डिप्सिड, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप बोलते हैं, और उनका कट ऑफ होता है 140 मिलीग्राम। अगर 140 मिलीग्राम से ऊपर होता है तो उसे हम जेस्टेशन और डायबिटीज बोलते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होना, और बीपी मॉनिटर करते हैं, और दूसरे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वायबिलिटी देखने के लिए या कोई प्रेगनेंसी लोकेट करने के लिए। जो सेकेंड विजिट होता है वो मंथली विजिट, 7 मंथ्स तक मंथली विजिट होता है, मतलब कि 28 वीक्स तक उसे मंथली डॉक्टर के पास आना होता है। 28 वीक्स के बाद ट्वाइस वीकली आना होता है 36 वीक तक, और 36 वीक्स के बाद उसे वीकली आना होता है ताकि हम बता सके कि मोड ऑफ डिलीवरी किस तरह से वो डिलीवर कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी है उसे ताकि वो नॉर्मल डिलीवर कर सके।
1: और हमारे शरीर में किन विटामिन्स की कमी है ये भी आप जरूर देखते होंगे, है ना?
0: हाँ जी।
1: और मैं आपसे ये जानूंगी कि आपने बताया कि एंटीनेटल केयर या प्रसव पूर्व जांच के दौरान केवल जांच करते हैं कि उनमें क्या विटामिन्स की कमी है या फिर कोई और खतरे उनमें है या नहीं। कई बार सुनते हैं अल्ट्रासाउंड हम करके आए हैं या हमें अल्ट्रासाउंड करना है, तो ये अल्ट्रासाउंड क्या है और कब कब करती है, क्यों जरूरी है इसकी?
0: एंटीनेटल केयर के दौरान सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड होता है जो 12 हफ्ते के अंदर होता है, उसमें हम यह पता कर सकते हैं कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है क्या नहीं है। कभी कभार कोई महिला प्रेजेंट करते हैं जो बच्चा पनपता है वो कहीं और, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं उसे, उसे देखने के लिए। और जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चे में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि सिंड्रोम्स रहते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, तो ये भी हम एंटीनेटल चेकअप के दौरान ही पेशेंट को बता सकते हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है।
1: जी, हम सुनते हैं कई बच्चे में कि जन्म के बाद उन्हें पता चला कि उनमें कई सारे डिफेक्ट्स है या फिर उनके विकास में देरी थी या फिर आने वाले समय में हो सकते हैं, ये सारे जो समस्या है अगर आप प्रसव पूर्व जांच नहीं करवाते हैं तभी आते हैं, है ना?
0: जी, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि अगर हमें पता है कि ये महिला हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि
1: जी, इस बीच आपको थोड़ी सी टोकना चाहूंगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है?
0: अगर कोई महिला 35 एज के बाद प्रेग्नेंट होते हैं तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और उनका एक रिस्क फैक्टर रहता है कि उनके बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ सिंड्रोम वो कैरी कर सकते हैं बच्चे में, कोई प्रॉब्लम जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो इस डाउन सिंड्रोम को हम एक स्कैन के द्वारा पकड़ सकते हैं, जैसे वो स्कैन 11 से 14 हफ्ते के अंदर होता है, जिसमें हम बच्चे के गले के पीछे एक पानी रहता है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बोलता है, उसे मेजर करते हैं और बच्चे के नाक के हड्डी को मेजर करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। अगर डाउन सिंड्रोम हो तो बच्चे के नाक की हड्डी एब्सेंट रहता है और ये गले के पीछे जो पानी रहता है वो कुछ बढ़ के होता है। उसको और अगर सेंसिटिविटी लाना चाहते हैं तो एक ड्यूअल मार्कर टेस्ट रहता है जो कि सीरम मार्कर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा स्कैन हम 18 से 20 हफ्ते में करते हैं, जिसमें हम बच्चे के सारे अंग डेवलप हुए है कि नहीं देखते, जैसे कि हार्ट अच्छे से डेवलप हुआ क्या नहीं, कोई ऑर्गेन में कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो देखते हैं 18 से 20 वीक्स में। उसे हम बोलते हैं टीफा स्कैन, टारगेट इमेजिंग ऑफ फिटल एनोमलीज।
1: जी जी, ये तो रही हर गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के दौरान दिए जाने वाली सुविधाएं, और सही आहार का बहुत ही भरा भूमिका होती है, तो किस तरह के आहार गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को लेनी चाहिए?
0: अगर डाइट की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए, जो कि हम बोलते हैं 18-20 ग्राम प्रोटीन पर डे रहना चाहिए, प्लस कार्बोहाइड्रेट का मात्रा थोड़ा कम होना चाहिए। और जो मेडिसिन हम लेते हैं, जैसे कि जैसे ही हम कंसीव होते हैं अगर वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो फोलिक एसिड नाम के एक मेडिसिन रहते हैं, वो 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं अगर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आते। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या क्या आते हैं, जैसे कोई महिला पहले से ही डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या उनके पहले बच्चे में कोई दिक्कत हो, जैसे कि रीढ़ की हड्डी कुछ अच्छी तरह बना नहीं हो, कोई महिला ऑलरेडी एक मिर्गी बीमार से जूझ रही है, तो उन्हें हम फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं, 12 हफ्ते तक उन्हें 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं। और अगर लो रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई उनको दिक्कत नहीं है, तो 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं।
1: जी, और कहते हैं कि पर्याप्त नींद प्रेग्नेंट महिलाओं को लेनी चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है?
0: एक प्रेग्नेंट महिला को 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस रहते हैं तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है।
1: तो आने वाले बच्चे में कोई समस्या ना आए, इसीलिए पर्याप्त नींद भी लेनी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि एक गर्भवती महिला को माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए 8वीं बार तक कम से कम प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए, तो उसके बावजूद भी मैंने कई बार सुना कि बच्चे के जन्म जो है डॉक्टर द्वारा दिए गए तारीख से कई बार आगे पीछे हो।

0: जाते हैं, तो इसके क्या कारण रहते होंगे? और जब कोई महिला आठवीं बार आपके पास आते हैं, तो उनमें से किन महिलाओं को आप सीधे अस्पताल में भर्ती कराते हैं?
1: जैसे कि अभी मैंने कहा कि एंटीनेटल विजिट्स मिनिमम 8 विजिट्स होने चाहिए, बट अब कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, जैसे कि पेशेंट बता रही है कि उनकी पहले 2 बच्चे खराब हो गए, ये पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो मे बी कि उनके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या बच्चेदानी की मुंह जो हम सर्विस बोलते हैं वो थोड़ा छोटा हो, तो वो समय से पहले बच्चे डिलीवरी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 हफ्ते तक रहता है, बट जो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं उसमें सिर्फ 4% लोग डिलीवरी करते हैं, उसकी जस्ट एक हफ्ते पहले डिलीवर हो सकते हैं या एक हफ्ते बाद डिलीवर हो सकते हैं
0: जी। और डॉक्टर साहिबा, हम हमारे यहाँ तवांग के बारे में चर्चा करें, तो यहाँ के जो गर्भवती महिलाएं होते हैं आपके पास कितने समय के बाद आते हैं? क्या वे पहला तिमाही में ही आपके पास आ जाते हैं, या फिर काफी देर होने के बाद जब उनमें कोई समस्या आने लगते हैं तभी आते हैं? यहाँ की स्थिति क्या है अभी तक की?
1: यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे कोई दूर दराज के पेशेंट्स आते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए ही आते हैं, और वो 5वें या 6ठे महीने में आते हैं, हालांकि उन्हें फर्स्ट विजिट में जैसे कि 12 हफ्ते के अंदर आना चाहिए, पर वो 5 या 6 महीने में आते हैं या डिलीवरी के दौरान पहुंच जाते हैं
0: जी। तो तब तक किसी में अगर कोई समस्या आनी होती है तो आ ही गया हो सकता है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो उस समय थोड़ी सी समस्या माँ और बच्चे दोनों में हो सकती है, तो हो सके तो जब आप कंसीव करते हैं पहला तिमाही में ही आना सही है, है ना?
1: इससे हम ये भी पता कर सकते हैं जैसे गर्भनाल कहाँ पे है, अगर गर्भनाल नीचे की ओर हो तो ऐसे भी हो सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें ब्लीडिंग होने की चांसेस है और गर्भपात होने के चांसेस भी होते हैं।
0: ये तो रही गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच के बारे में। अब चलते हैं बच्चे के जन्म की ओर, और यहाँ पर आते हैं 2 तरह के डिलीवरी, पहला है नॉर्मल डिलीवरी और दूसरे सी सेक्शन डिलीवरी। तो इन दोनों में माँ और बच्चे दोनों में फर्क क्या देखने को मिलते हैं? जैसे कुदरती तरीके से बच्चे की जन्म करने में क्या फायदे हैं, और सी सेक्शन करने में कोई नुकसान है या नहीं?
1: नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल मेथड है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि लाइक बच्चा नेचुरल वे से डिलीवर होता है, तो बच्चे में इम्यूनिटी ज्यादा होते हैं, इम्यूनिटी मतलब बीमार होना कम होता है, प्लस उनका फ्यूचर में जाकर कोई उन्हें लंग्स प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी उनके लंग्स से ल्यूट क्लियर खुद ब खुद हो जाता है।
0: अच्छा।
1: पर कोई कोई इंडिकेशंस रहता है कि इस पेशेंट में सिजेरियन करना हो, जैसे कि अगर आपका गर्भनाल नीचे की ओर हो तो उन्हें इलेक्टिव सिजेरियन करना होता है
0: जी जी।
1: और अगर बच्चा सही से घुमा ना हो, जो हम रीच डिलीवरी बोलते हैं, तो उनमें सिजेरियन करना होता है, या पेल्विक बोन होता है वो थोड़ा सा छोटा हो
0: जी जी,
1: तो उनमें भी इलेक्टिव सिजेरियन करना होता है। और अगर हम बात करें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन हम कंडीशन जैसे कि अगर बच्चा फंस गया हो, नीचे से नहीं निकल रहा हो, तो उसमें इमरजेंसी सेक्शन करते हैं, या बच्चे ने अंदर ही पोटी कर दिए है, जो कि हम मीकोनियम बोलते हैं मेडिकल टर्म में, मीकोनियम पास कर दिए, उनमें सिजेरियन सेक्शन करते हैं, या बच्चे के हार्ट काफी नीचे नॉर्मल, बच्चे के हार्ट बीट अगर नॉर्मल माना जाता है वो है 110 से 160 माना जाता है, अगर 110 के नीचे जाए तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हमें तुरंत ही बच्चे को ऑपरेशन के दौरान निकालना पड़ता है
0: जी जी। तो ये तो रही अस्पताल में होने वाली नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन, है ना? आपके पास एंटीनेटल केयर के लिए तो जरूर आते हैं, पर उनके जब डिलीवरी के टाइम आते हैं, डिलीवरी के समय जब नजदीक आते हैं, तो वो अस्पताल नहीं आते हैं, घर पे ही पैदा करते हैं आप, तो उनको आप क्या सलाह देंगे और कहाँ तक ये सही हो सकता है?
1: प्रेग्नेंट महिलाओं को कहना चाहूंगी कि वो लास्ट के मंथ हो तो उन्हें वीकली विजिट करना चाहिए हॉस्पिटल, ताकि हम बता सके कि वो नॉर्मल कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप घर में रहकर डिलीवरी करते हो, और ऐसे भी मैंने देखा है यहाँ पे कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं को छंग पिला के लेके आते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसमें हम ना पेशेंट को कुछ दवाई दे सकते हैं, बिकॉज दवाई से रिएक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और डिलीवरी के दौरान ये भी होता है कि जैसे बच्चा डिलीवरी होता है तो बच्चेदानी जो गर्भाशय बोलते हैं वो उसमें से ब्लीडिंग काफी होता है, तो उसे हमें रोकने के लिए बहुत तकलीफ होता है
0: जी। लोग जो है सी सेक्शन या सीजरन को सुनकर शायद डर जाते होंगे, आपने उनके अंदर समस्याएं देखे होंगे और आपने कह दिए होंगे कि आपकी सी सेक्शन के जरिए ही बच्चे की जन्म होंगी, तो वो डर के मारे अस्पताल आते नहीं है, घर पे कुदरती तरीके से जो जन्म देने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे? सी सेक्शन कितने नॉर्मल है आप किस तरह से बताएंगे?
1: सीजरन सेक्शन कुछ ज्यादा प्रॉब्लम

0: नहीं होता है, बल्कि अगर आप नॉर्मल के चक्कर पे घर पे रहोगे, अगर बेबी अंदर की ओर फंस जाते हैं तो उसमें और दिक्कत है, वो दोनों माँ और बच्चे की जान को खतरा रहता है उस समय। तो इसलिए हम सिजेरियन के लिए काउंसिल करते हैं।
1: जी जी, जैसे कि अस्पताल में कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे की जन्म देने के लिए आए और उनके कुदरती तरीके से जन्म हुए तो किसी के सी सेक्शन हुए, तो उनको अस्पताल में कितने दिन तक आप रहने की सलाह देते हैं?
0: अगर कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसे एटलीस्ट 24 घंटे तक रहना होता है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना होता है कि उनको कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर कोई सिजेरियन हुआ तो उसे एटलीस्ट 3 से 4 दिन एडमिट करके रखते हैं, क्योंकि सिजेरियन में उन्हें दिक्कत होता है, थोड़ा चलने में दिक्कत होता है, थोड़ा डाइट लेने में दिक्कत होता है, तो उस एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि किस तरह से उसे धीरे धीरे अपना डाइट स्टार्ट करना है।
1: बच्चे के जन्म के बाद कई महिलाएं ऐसी भी होती है कि वो तुरंत काम करनी शुरू कर देते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे और उन्हें फिर डिलीवरी के बाद कब कब अस्पताल में आनी चाहिए और अपने ध्यान जो है किस तरह से रखे?
0: डिलीवरी के बाद उसे एटलीस्ट 6 हफ्ते तक रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चेदानी को नॉर्मल साइज आने को एटलीस्ट 6 हफ्ते लगते हैं, और अगर आप उससे पहले कुछ काम करते हो तो चांसेस है कि आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो या बच्चेदानी थोड़ा नीचे आ जाए और फ्यूचर में आपको दिक्कत होने की चांसेस होती है।
1: एक महिला की पहला बच्चा हुआ तो फिर दूसरे बच्चे के लिए वो कब योजना बना सकती है?
0: अगर किसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो वो एटलीस्ट 2 या 3 साल गैप दे सकते हैं दो बच्चे के अंतर। अगर किसी के सिजेरियन हुआ है तो उसे एटलीस्ट 3 साल गैप रहना होता है, क्योंकि बच्चेदानी को हील होने के लिए एटलीस्ट 6 महीना चाहिए होता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो अच्छी तरह से कंसीव कर सके।
1: किसी महिला की पहला बच्चा जो है सी सेक्शन हुआ है तो दूसरी बार भी उनके अगर सी सेक्शन ही होने की संभावना हो तब क्या करनी चाहिए?
0: सबसे पहले मैं यह पता करना होता है कि फर्स्ट जो उनका सिजेरियन हुआ वो किस कारण से हुआ, जैसे कि बच्चे के हार्ट बीट ऊपर नीचे हुआ या इमरजेंसी सिजेरियन, पानी एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो गया उनके वजह से हुआ, तो हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसे नॉर्मल ट्राई करा सकते हैं। बट हालांकि उसमें यह होना है कि 24 घंटे तक हमारे ब्लड बैंक ओपन होना होता है, प्लस एनेस्थेलोजिस्ट रहना होता है, तभी हम नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, जो कि हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं टोलैक, ट्रायल ऑफ नॉर्मल लेबर।
1: जी, और कहते हैं किसी महिला के अगर तीसरी बार सी सेक्शन होते हैं तो वो अब दोबारा बच्चे की जन्म नहीं दे पाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? और हालांकि सरकार कहते हैं कि 2 ही बच्चा करनी चाहिए, मगर अपने अपने एक चाहत होते हैं कि हमारा और बच्चे हो जाए, तो उनको आप क्या सलाह देंगे, इस बारे में क्या बताएंगे आप?
0: अगर आपके 2 सिजेरियन हुए हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बार कंसीव नहीं कर सकते, आप चौथे बार भी कंसीव कर सकते हैं, बट उसमें 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप होना होता है, जो हम बर्थ स्पेसिंग बोलते हैं, चौथी बार भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो।
1: जी जी जी, जैसे कि हम कई बार सुनते हैं मिसकैरेज, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मगर जो महिला दिखने में तो काफी सारे हड्डे कट्टे होते हैं, हेल्थी होते हैं, हुआ होता है कई बार, तो इसके कारण क्या होते होंगे?
0: मिसकैरेज के कॉजेज बहुत सारा होता है, जैसे कि माँ को अंडरलाइन कोई डिजीज हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या मदर खुद डायबिटिक हो,
1: अच्छा,
0: या कोई हाइपरटेंसिव हो, तो खुद ब खुद बच्चा अच्छे से नहीं पनपता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है।
1: जी जी।
0: दूसरा, अगर माना जाए तो हम जैसे 39-40 के एज में कंसीव होना तो भी मिसकैरेज का चांस ज्यादा होता है। हस्बैंड में कोई दिक्कत हो, जैसे हस्बैंड के शुक्राणु में कोई दिक्कत हो तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होता है।
1: जी, तो मिसकैरेज होने के कई सारे कारण होते हैं, है ना? जब हम डिलीवरी की तरफ थोड़ी सी और पीछे चले तो मैं ये आपसे सवाल करूं कि बच्चे जब जन्म होते हैं तो उनके सही वजन कितनी होनी चाहिए, या फिर कई बच्चे बहुत सारे ज्यादा वजन के भी होते हैं तो कई कम वजन के भी होते हैं, तो अगर किसी के कम या ज्यादा होने से फिर क्या समस्या हो सकते हैं?
0: बच्चे की नॉर्मल वजन होता है, जैसे कि अगर आप 2.5 kg के ऊपर हो तो वो नॉर्मल वेट माना जाता है बच्चे का, अगर 2.5 के नीचे हो तो लो बर्ड वेट बोलते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोथर्मिया होता है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस अच्छा, ज्यादा होता है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: अगर बच्चा लो बर्ड वेट है तो उसे हम पहले ही पीडियाट्रिशियन को बता के रखते हैं कि बच्चा लो बर्ड वेट है, तो पीडियाट्रिशियन टाइमली आके उनके देख के अगर उसे एडमिट करना हो तो वो एडमिट करते हैं। अगर बच्चे का वेट 4 kg से ज्यादा हो तो हम उसे मेडिकल टर्म में मैक

0: ट्रिपोजोमिया बोलते हैं या बिग बेबी बोलते हैं. तो इसमें क्या दिक्कत है कि माँ को बच्चे डिलीवरी करने में दिक्कत होने के चांसेस है और दूसरा बच्चे को फ्यूचर में डायबिटिक होने के चांसेस है.
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, आज के इस कार्यक्रम में आपने कई सारे जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, तो अंत में मैं चाहूंगी कि इस समय जो हमें सुन रहे हैं हमारे गर्भवती महिलाओं को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हर प्रेग्नेंट लेडी को एक नियर बाई पीएचसी डॉक्टर से आप जाके जांच करवाए या गायनोकोलॉजिस्ट से आके मिले, ताकि हमें पता चले कि क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्या लो रिस्क प्रेगनेंसी है और हमें उसे किस तरह से मैनेज करना है और फ्यूचर में ना कुछ उन्हें दिक्कत हो.
1: तो डॉक्टर छोटन सिंह, आज आपने अपने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और हमें सुन रहे हमारे कई सारे श्रोतागण ऐसे होंगे जो विवाहित हैं और जो इस समय गर्भवती हो सकते हैं, तो उनके लिए आपने कई सारे जानकारियां दी, प्रसव पूर्व जांच की क्या महत्व है, डिलीवरी के समय क्या क्या करनी चाहिए. तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी.
0: धन्यवाद.
2: श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे खंडू ड्रोअ संगमू जिला अस्पताल तवंग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटन सिंह से प्रसावपूर्ण देखभाल विषय पर भेंट वार्ता. भेंट करता थे मिस दर्शी ट्रमा. इसी के साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं पर समाप्त हुआ. आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा इस संदेश के बाद.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी. तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:32 हुए हैं. लीजिए श्रोताओ, अब पेश है दोनों व गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज. आई श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला धुन सुनिए 14वीं का चांद फिल्म से.

निजी श्रोताओ, इसी धुन पर सुनते हैं यह गीत गायक मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत शकील बर्दवानी के है व संगीत रवि का।

आई श्रोताओ आने लेते हैं इसी धुन पर यह गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वरों में। हसरत जयपुरी के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही दुनोवा गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रक्षा, रणनीति, प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी से साझा की। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति समेत विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के दृष्टिकोण भी साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति प्रयासों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराते हुए संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत युवाओं के अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की दिशा में यात्रा को तेज करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तिराप जिले के लिए राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तिराप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, खोंसा नगर की संक्रिय सड़कों को चौड़ीकरण एवं सुधार तथा लाजुक क्षेत्र में बार बार होने वाले सड़क अवरोधों के स्थायी समाधान पर चर्चा की गई। तिराप उपायुक्त तेचु आरा ने मल्टीपर्पज कन्वेंशन हॉल की स्थापना, देवमालू में चारजू रिवर फ्रंट के विकास, एफसीआई गोदाम के तत्कालीन पुनर्निर्माण, खोंसा में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स, दूरदराज क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा वांगचा राजकुमार कॉलेज को बहुसंकाय संस्थान में उन्नत करने की मांग रखी। बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता, पर्यावरण एवं वन मंत्री वांगकी लोवांग, विधायक चाकत आबो, वांगलाम साबिन, वांगलिंग लोवांगदोंग सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंगता सिंह ने आज ईटानगर में पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करते हुए विभाग के नए लोगो का अनावरण भी किया। ये लोगो ग्रामीण जय सुखाय, ग्रामीण जय हिताय की भावना से प्रेरित है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह पहल केवल डिजिटल उपलब्धि नहीं बल्कि समावेशी शासन, जनभागीदारी और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने भारत सरकार के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आज से आयोग के ऑनलाइन भर्ती आवेदन पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की

0: 12 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। रोइंग स्थित मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य प्रभाग ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग आनिनी मार्ग पर मायुदिया पास क्षेत्र में बाघ की गतिविधि देखे जाने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा परामर्श जारी किया है। प्रभागीय वन अधिकारी मुतरूमी APFC के अनुसार इस महीने मायुदिया पास स्थित सैन्य संचार चौकसी के पास वन अधिकारियों ने बाघ की गतिविधि दर्ज की है। जन सुरक्षा को देखते हुए नागरिकों, पर्यटकों और यात्रियों को मायुदिया पास के आसपास ट्रैकिंग, पिकनिक और सड़क किनारे घूमने से बचने तथा सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह जारी की गई है। तवांग पुलिस ने एंटी ड्रग स्क्वाड और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ संयुक्त अभियान के तहत कल दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 81.6 ग्राम वजन की संदिग्ध हेरोइन की 68 शीशियां बरामद की गई है, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोदरलिंग गांव के 27 वर्षीय तेंजिंग फुनसो और नेहरू मार्केट के 27 वर्षीय लोपसांग के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ तवांग पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। छापेमारी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तेंजिंग जाम्बे और असिस्टेंट कमिश्नर सांगे नोरबू भी उपस्थित रहे। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली और तिराप के लिए ऑरेंज एवं अन्य 13 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सियांग, लोअर सियांग, कमले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज प्रति लीटर 51 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले इस महीने की 15 तारीख को 3 रुपए प्रति लीटर और 19 तारीख को 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। और सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत मसौदा नियम व्यापक जन परामर्श के लिए प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था आगामी महीने की 21 तारीख तक मौजूदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। The U.S. Secretary of State Marco Rubio called on Prime Minister Narendra Modi today. Secretary Rubio briefed Prime Minister on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Secretary Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. The state-level review meeting of Tirap district was chaired by Chief Minister Pema Khandu through video conferencing today in Itanagar. During the meeting, the need to establish a medical college in Tirap to widen and improve the narrow roads within Khonsa township and long-term solution to frequent road blockages in Lazu were discussed. Deputy Commissioner Tirap Techu Aran urged for establishment of multi-purpose convention hall, development of Charju riverfront at Deomali, urgent reconstruction of FCI godown, multi-level parking complex in Khonsa to strengthen broadband and network connectivity in far-flung areas, and upgradation of Wangcha Rajkumar College into a multi-faculty institution. Meanwhile, Deputy Chief Minister John Amin, Chief Minister Manish Chief Secretary Manish Kumar Gupta, Environment and Forest Minister Wangki Loang, MLAs Chagat Abo, Wanglam Savin and Wanglin Loangdong and officers were also present during the meeting. Rural Development and Panchayati Raj Minister Ojing Tasing today launched the official website of Department of Panchayati Raj and unveiled the department's new logo, guided by the ethos of Gramin Jai Sukhaye, Gramin Jai Hitaye in Itanagar. In a social media post, he said, "This initiative signifies more than a digital milestone. It reflects the commitment to strengthen grassroots democracy through inclusive governance, greater public engagement and citizen-centric service delivery." UPSC invites application UPSC invites application from eligible candidates for direct recruitment to various posts in Government of India. Interested candidates

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। डीजी श्रोताओ, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पैगंग लहुसे पेमा ट्रची तेंजिन दवा लुपसंग तोंगचिन दोर्जी सोनम छोमो पासप और तेंजिन छोमो। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म साजन से यह गीत अलका याग्निक और एसपी बालासुब्रमण्यम के आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और इस गीत के बोल हैं देखा है पहली बार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए। फिल्म राजा जानी से यह गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत निर्देशन पर आनंद बख्शी के लिखे बोल पर और इस गीत को आवाज दे रहे हैं गायिका लता मंगेशकर ने। इस गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है निमानाबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म धुन से यह गीत महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर लुधियानवी के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है रवि ने, और इस गीत के बोल हैं संसार की हर शय का।

श्रोताओं, अभी आप आने ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी

0: Pradesh, emphasizing the important role of political parties in ensuring the successful conduct of the revision process. He advised party representatives to organize training programs among themselves and appoint booth-level agents who would play a crucial role in assisting booth-level officers throughout the SIR process. He further called for active cooperation and coordination from all stakeholders, including heads of departments and representatives of political parties. That is all in this edition of Arunachal News Reel. This edition was produced by the Regional News Unit of Akashvani Itanagar and presented by Narang Koyang, assisted by Tika Prasad. Return next week, same day, for another edition of Arunachal News Reel. Till then, namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणाचल न्यूज रील। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है आज के कलाकार। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कुमार सानू के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि गीतों का सिलसिला अब जारी रहेगा। पेश है इस कार्यक्रम का सबसे पहला गीत।
2: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगे खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल हैदराबाद जीत के बावजूद क्वालिफायर से चूकी। सुपर शतरंज क्लासिक में आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगला मुकाबला अनीस गिरी से। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी उत्साह के साथ जारी। और जिनेवा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुछ खिलाड़ियों ने रजत तो कुछ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोक से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह उज्बेकिस्तान के एजान खलमा खानोव से 9-0 से हार गए। 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कुमार सचिन ने पदक अपने नाम किया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। आइए सुनते हैं मैच का हाल।
1: प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग में आज सूरज वशिष्ठ उप विजेता रहे। फाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में सूरज ने किर्गिस्तान के नूरिस्तान सुई और गुलोव को 3-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सागर सिंह ने सऊदी अरब के मुंथिर अब्दुल्लाई जंदू को 4-0 से शिकस्त दी थी। प्रतियोगिता में नेहा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ चैंपियनशिप में रही हैं। उन्होंने पहले अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और साथ ही अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। दूसरी ओर काजल ने तेजी से खुद को भारत की सबसे होनहार कुश्ती प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। वे मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन, अंडर 17 विश्व चैंपियन और अंडर 20 एशियाई चैंपियन के तौर पर दानांग पहुंची हैं। प्रो रेसलिंग लीग के कई पहलवान भारतीय दल का हिस्सा हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि ये लीग भारत की अगली पीढ़ी की कुश्ती प्रतिभाओं को निखारने, विकसित करने और उनकी प्रगति के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रही है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को मंच भी प्रदान करती है, जिसके जरिए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। इन प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत

0: ये रेसलिंग के विकास में अहम योगदान देना होता है, जिससे वे उभरती हुई प्रतिभाओं को सपोर्ट कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। चैंपियनशिप से सीधे चलते लखनऊ की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला जारी है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।
1: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने 22 गेंद पर 56, तो वहीं हेड ने 16 गेंद में 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने 48 गेंदों में 113 रन की जबरदस्त साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 79 रन, जबकि क्लासेन ने 24 गेंदों पर 51 रन बनाए। अंतिम ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी ने 29 रन जोड़े। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार ने 2, तो वहीं सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट चटकाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ईशान मलिंगा को 2, साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को 1-1 सफलता हाथ लगी। ईशान किशन को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये ईशान किशन का आरसीबी के खिलाफ लगातार 4th अर्धशतक था। मैच के बाद ईशान किशन ने आरसीबी के साथ खेलने का अपना अनुभव साझा किया।
2: आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई सेड, आई जस्ट टेक वन मैच एट अ टाइम, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई डू फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम प्लेइंग अगेंस्ट देम, एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड आई जस्ट ट्राई टू डू माय थिंग एंड इट वर्क्स ऑन माय वे।
1: इस जीत के बावजूद हैदराबाद क्वालिफायर में जगह नहीं बना सकी। वहीं बेहतर नेट रन रेट के कारण आरसीबी शीर्ष स्थान पर रही। 26 मई को क्वालिफायर 1 में आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। वहीं 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद 4th स्थान पर पहुंचने वाली टीम से खेलेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी जरूर, कल सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की, लेकिन वे क्वालिफायर में अपनी जगह बनाने से पीछे रह गए। वहीं आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 1 में अपनी जगह बना ली है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं विशेष, हमारे सहयोगी। विशेष, कल अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टॉप 2 की जगहें फिक्स हो गई, लेकिन 4th स्थान के लिए अब भी जद्दोजहद बाकी है। कौन से ऐसी टीम है जो आपको नजर आ रही है कि 4th स्लॉट के लिए अपना स्थान पुख्ता करती नजर आ रही है?
3: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि 3 टीमें अपनी जगह पहले ही प्लेऑफ के लिए पक्की कर चुकी हैं और तीनों लगभग जो है बराबर दर्जे की टीमें हैं और 18-18 अंकों के साथ इन्होंने प्लेऑफ्स में जगह बनाई है। सिर्फ नेट रन रेट के चलते इन टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहना पड़ा है। वहीं अगर बात करें हम 4th स्थान की, तो जिसके लिए राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली अभी रेस में बनी हुई हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो वह अपना मुकाबला पहले तो जीतें, उसके बाद उन्हें राजस्थान, कोलकाता और पंजाब तीनों के मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो वो अपना मुकाबला जीतें, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब के मुकाबले हारने की कामना करें। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे पहले अपना मुकाबला जीतें और राजस्थान अपना मुकाबला यदि हारती है तो पंजाब को प्लेऑफ्स में जगह मिलेगी। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे सुनहरा मौका उन्हीं के पास है कि बस वो, उन्हें अपना मुकाबला जीतना है और उनके लिए प्लेऑफ्स में स्थान पक्का हो जाएगा।
0: तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स का फॉर्च्यून जो है अपने हाथों में है और वो अपने मुकाबला जीत करके सीधे टॉप 4 में जगह बना लेंगे। अब सीधे रुख करते हैं शतरंज की ओर। सुपर शतरंज क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता के 8वें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगली बाजी में प्रज्ञानंदा का मुकाबला अनीस गिरी से होगा। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में अब तक के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में।
4: प्रतियोगिता के मुकाबले में आज आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल करने के कुछ अच्छे मौके गवा दिए। दिन के अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फेबियानो कारुआना और जर्मनी के विसेंट कीमर के बीच बाजी ड्रॉ रही, जबकि विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट पर लगातार दूसरी जीत

0: दर्ज की। नीदरलैंड के एक अन्य खिलाड़ी अनीश गिरी को रोमानिया के डीएक बोगदान डेनियल से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के नाम वापस लेने के बाद अमेरिका के वेस्ली सो को वॉकओवर मिला। अब प्रतियोगिता में आखिरी दौर का खेल बाकी है, जहां 5 खिलाड़ी खिताब के लिए दावेदारी पेश करेंगे। अभी कीमर और कारुआना दोनों 5-5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। सिंदारो, वेस्ली और फोरेस्ट 4.5 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे, जबकि प्रज्ञानंदा गिरी और वाचियर लागरेव 4-4 अंक लेकर संयुक्त छठे स्थान पे हैं। डीएक बोगदान डेनियल ने अपना अभियान 3.5 अंकों के साथ समाप्त किया। अंतिम दौर में उन्हें वॉक ओवर मिलेगा, जिससे उनका स्कोर 4.5 हो जाएगा। सिंदारो पर दूसरे दौर में जीत के बाद प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत की तलाश वाचियर लागरेव के खिलाफ लगभग पूरी हो गई थी। प्रज्ञानंदा अपनी अंतिम बाजी में गिरी का सामना करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैस्ट।
1: आर प्रज्ञानंदा ने लगातार शार्प माइंड और दमदार खेल प्रदर्शन के दम पर पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई और अपनी अमिट छाप छोड़ी। हालांकि कैंडिडेट्स में उनका प्रदर्शन मिला जो रहा, तो ऐसे में यह प्रतियोगिता उनके लिए बेहद अहम है। कर लेते हैं अब एथलेटिक्स पे, जहां झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। आइए चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता महवीश के पास। महवीश हमारे साथ रांची से जुड़ गई हैं। तो महवीश, रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस समय राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता चल रही है। पहले दिन तो खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए, लेकिन आज दूसरे दिन के मुकाबले में कौन कौन से बड़े उलटफेर या रिकॉर्ड देखने को मिले?
2: जी हाँ, इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। जैसा कि आपने बताया कि आज खेले हुए फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गुरिंदरवीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। आज पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महिलाओं के शॉर्ट पुट स्पर्धा का खिताब रिलायंस की कृष्णा जयशंकर ने जीत लिया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज
1: महवीश, इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन प्रतियोगिता पर क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है?
2: बिल्कुल, रांची में पारा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं हुआ है। देश भर के करीब 700 एथलीट इस कड़कती धूप में भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। आयोजकों ने खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान पर ORS, मेडिकल टीम और पर्याप्त पानी की विशेष व्यवस्था कर रखी है।
1: महवीश, ये प्रतियोगिता आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के लिए बेहद अहम है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए आगे चयन की क्या प्रक्रिया होने वाली है?
2: जी बिल्कुल, ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन होना है। जो भी खिलाड़ी यहाँ तय किए गए क्वालिफिकेशन मार्क को छू रहे हैं, उन्हें सीधे भारतीय टीम का टिकट मिल रहा है। तो अगले 2 दिनों में कई और रोमांचक फाइनल मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद महवीश, आपने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताया जिनसे पूरे देश को उम्मीदें रहती है, और जैसे जैसे प्रतियोगिता अंतिम रूप लेगा हम और भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे। बात करते हैं स्क्वैश पर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लड़कों के वर्ग में शिवेन अग्रवाल, वहीं लड़कियों में अनिका दुबे ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब सीधे चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जिनेवा ओपन टेनिस पर। जिनेवा ओपन 2026 टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे। न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनस के साथ खेलते हुए फाइनल मुकाबले में रोमेन अर्नियार्डो और मार्क पॉलमेंस से 6-3, 6-7, 7-10 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जरूर

0: उपविजेता रहे, लेकिन कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें यूकी भामरी ने, जिसको अपने नाम किया है, 18वीं वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने 2025 में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे यूएस ओपन जैसे प्रमुख टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल खेल चुके हैं। रुख कर लेते गोल्फ की ओर। बेल्जियम में भारतीय गोल्फर युवराज संधु ने रिंकवेन इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में चल रहे सौडाल ओपन में कट हासिल किया, लेकिन शुभंकर शर्मा चूक गए। दक्षिण अफ्रीका के जेंडर लोम्बार्ड और फ्रांस के टॉम वैलियन दूसरे दौर के बाद संयुक्त बढ़त बना चुके हैं। और श्रोताओं, हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला जारी है। लखनऊ ने 4 विकेट पर 14 ओवर में 134 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी,

0: जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है,

0: अगर हम सब ने नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा।

लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के